0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु

0: जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं, और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं, आप हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरोश राधा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर, उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं, और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है
0: जी।
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है
0: जी।
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वाज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता, और ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शंस एक कंपनीज में मिली। तो मगर मेरा क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया, और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: में एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो
0: जी
1: बहुत बड़ा रहस्य है, जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं,
0: गिरते हैं।
1: के चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमिटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर जी। जी जी,
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के, वो बेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात,
1: जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं तो आप गुरु अपनी जो चैतन्य
0: ऊर्जा
1: है, उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है सुगम करते
0: हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, और इसके बारे में विस्तार ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा। लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ अपने लिसनर्स को कि कहते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क तक लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अभी आपने हमें बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। लेकिन सर, आज का जो समय है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो खत्म हो गई और घुटना स्पर्श हो गया है। इस बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना सही है, कितना गलत है, और अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल रहे हैं। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये जो बातों का सिलसिला बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक विद्वान, एक क्योंकि एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी, जो कि जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में डायरेक्टर हैं और 38 साल का अनुभव है। इस विषय पर जरूर जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है, लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में, जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर तो धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यवहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यवहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है, वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी।
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म में है। और जो सनातन धर्म है उसको हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, मगर जब हम इनकी, इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं, मने मग्न चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। तो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
0: प्रकाशमान
1: शक्ति से जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं।
0: जी।
1: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में,
0: जी,
1: ये एम्बेडेड है,
0: विद्यमान है।
1: इसी हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे,
0: जी,
1: तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है। और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है। ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे,
0: बहुत अच्छा,
1: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे
0: जी।
1: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
0: वो सबके एक है जी,
1: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके हैं,
0: सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ
1: हमारे वेदों

0: उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
1: बहुत खूबसूरत।
0: और संस्कृत हमने छोड़ दी तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलॉसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
1: दार्शनिक।
0: दर्शन का अर्थ है होता है देखना,
1: देखना
0: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से, अंदर जो चैतन्य शक्ति से, चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
1: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
0: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति गई।
1: जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया और उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो। स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है? वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है, लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था, तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती है, उनसे, उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर, जैसे भी आपकी संस्कृति है, उसके अनुसार जो अंदर वास करता है उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में, तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं पहले स्वराट फिर सम्राट, जो स्वराट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक काया कलप आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह। ये
0: जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा आई एम द लिमिटलेस सेल्फ, तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है। शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अग्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदास है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जंबो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे फिर आप संसार में कर्म कीजिए।
0: जी जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है, एफर्टलेस एक्शन होना चाहिए।
0: सो लिसनर्स, कहने का एक आशय यही है, अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं और अगर इस तरीके से इंसान अपनी जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपनी जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है फोनिक, हमारी बातें हो रही हैं। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार सर। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है। और हमारे इसमें संस्कार मिल जाएं, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर मैं इस बात को यूं कहूं कि, या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था। वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है। इस युग हम प्रोजेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हाँ, तो साधु बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का। क्योंकि बीच में जब, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था। उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। मगर अगर आप वैदिक ऋषि देखो वो सब हाउस होल्डर रहे हैं, वो गृहस्थ थे सारे हमारे। तो और जो संन्यास और वानप्रस्थ वो तो सिर्फ एक दो आश्रम है हमारे जीवन में, बाकी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: तो वेद कभी नहीं कहता कि आप अगर इन सब चीजों का अध्ययन करते हो तो आपको साधु बनना है, क्योंकि वेद जिस बात की, जिस ज्ञान की चर्चा करता है वो इंटेग्रल नॉलेज है। वो ये नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सेक्युलर ज्ञान है कि अर्थली ज्ञान है, ये आपको रोटी कमाएगा। वो दोनों को इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है।
0: जी।
1: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ।
0: मंत्र
1: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल,
0: वायु,
1: अग्नि, वायु और आकाश। ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। ये सिंबल्स है। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
0: जी,
1: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड, और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस। ये तीन स्टेट्स है मैटर की। और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा, आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी, सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है,
0: साइंटिफिक
1: हमें समझने की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
0: जी,
1: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा सीक्रेट जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
1: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है। हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी और
0: सारे काम हो जाएंगे,
1: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
0: क्या बात?
1: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: क्या बात?
1: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
0: जी। जी,
1: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो न मोशन में होता है न रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
0: जी। जी,
1: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया, वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
1: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो,
0: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसनर्स, मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर, कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें समय दिया, फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। सो लिसनर्स बताइएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल बिंदास बातें करता हूं या जिक्र करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूं कार्यक्रम में, और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको यह पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं, तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी। तो इस तरीके से यूं कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
1: जी मुझे बेहद खुशी है, और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
0: थैंक यू सर, ये मेरी खुश नसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ?
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण मिला हुआ है, आज भी महात्मा बुद्ध वहाँ लेटे हुए हैं, और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ आते रहते हैं। हाल ही में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
0: जी,
1: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छे मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहाँ कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें हैं।
0: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे, और मैंने अभी आपका एक गाना भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो स्टडी का क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, पठन पाठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं?
1: पिछले 15 वर्ष से मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन संस्थान और कुछ और अन्य संस्थानों में पहले जुड़ा रहा हूँ, और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। और मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का, मैं पढ़ना ही कहूँगा, पढ़ाना तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज है जो हमारे गुरुओं को आती थी।
0: अरे क्या,
1: हम कोशिश बस ये करते हैं कि कुछ कर सकें। वैसे भी मेरा ये अपना मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पज है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट, नॉट टू इम्पोज ओन थॉट ऑन अदर्स। तो ये सीखना हर एक से हो सकता है, और ऋग्वेद की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, ये अनुभद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट अस नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, और वी हैव बीन वेलकमिंग ऑल गुड थॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग एंड इन अ विन विन सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड।
0: नाइस। चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
0: चला गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। देवानंद साहब पर यह गाना फिल्माया गया है, सिंगर आई थिंक रफी साहब है।
1: जी, रफी साहब।
0: रफी साहब, क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूं। तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। सच बात तो यह है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है। कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं। गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर, इवन विद इन अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जो मेरे पास आ गया वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है। और जहां तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता दुनिया है या नहीं जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी।
0: क्या बात,
1: इफ यू हैव वर्थीनेस दैट विल रिफ्लेक्ट। तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही।
0: क्या
1: पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है। और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माय ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड।
0: वाकई खुशी होती है
1: जी।
0: उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया, जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो एफएम है या एक कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, एक छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है। अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर। शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डर कर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे समझेंगे तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथाह भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर जाना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है और
0: बड़े अच्छे
1: एस डी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: प्लीज प्लीज।
1: मन

मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पार।

0: रे मांझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है, ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है, और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है, और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग हैं, बड़े मायने हैं।
0: सही कहा।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी सिंगर को। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं। चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है, और जब आप क्लासिकल

0: जानते हैं, तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है। वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है, और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
1: क्या
0: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है, वही आवाज के रूप में बाहर आता है।
1: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है। तभी आप किसी को,
0: अब किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा,
1: बनना पड़ेगा। तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है, तो किशोरदा का कोई गाना।
2: हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। लगती हो भली, हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले,
0: और वो गगन आप है गगन जी।
1: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
0: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जो मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: और दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, कि जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत।
0: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को भी स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो, और अपने हाथ की पतवार देखो।
1: क्या बात,
0: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
1: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
1: आए है,
0: देखना है तो नदी के पार देखो।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती है, आपके सामने कुछ नहीं है। खुद पर और खुदा पर यकीन कर, मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं है और अपना हौसला बुलंद नहीं है, तो कोई हमारी मदद नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ईश्वर भी खुदा भी उन्हीं बंदों की मदद करता है दोस्तों, कि जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर वही कहेंगे कि सुखद परिणाम, वो परिणाम आपके फेवर में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, स्टूडेंट्स को यूं कहूं कि गुरु मंत्र दिया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय, टेक केयर।

0: solo Sharda.
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो

0: सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम

ब्यूटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार करते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं आपके जाने पहचाने सिहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से।
1: भाई शशि कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, बिकॉज क्योंकि जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूं, या यूं कहें कि गार्डन गार्डन हो जाता हूं, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूं समझ लीजिए कि स्वागत कम ही मिलता है।
0: तो स्वागत आपका हो चुका है और अब चलते हैं सवालों की ओर।
1: जी
0: तो सिहतिया जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, क्या एक बार फिर सरल भाषा में समझाएंगे इन सबको?
1: जरूर। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है, और 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है, और 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनीमिया माना जाता है। दोस्तों,
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता।
1: हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आगे भी बातें होती रहेंगी सिहतिया सिंह जी से और टीकन देवी से, बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी सुना रही हैं आपकी अपनी टीकन भाभी, आइए सुनते हैं।
2: ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने के गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में ऐसा तो होता है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई, रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: तो भाभी, फिर आगे क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है, यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: अच्छा सिहतिया जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: भाई, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन गोली से कम असर या जल्दी सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IV यानी कि 4th FCM जैसे नस के रास्ते दिए जाने वाले आयरन उपचार पर विचार कर सकते हैं।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल नहीं, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है। ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अच्छा सिहतिया भैया, अब जरा जो IVFCM की आप बात कर रहे हैं तो इसको जरा आसान भाषा में समझाइए, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए।
1: भाई देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
0: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति समझी जाती है, इसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है।
1: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि पहले जांच, फिर सलाह और फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
1: जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख है।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ट्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
0: टीकन देवी जी, बहुत अच्छी बातें कहीं आपने। अब सियतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
1: क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वे IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें, स्वास्थ्य कर्मी की बात समझें।
0: सियतिया भैया, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है?
1: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना है। जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल टीकन देवी से जानना चाहूंगा, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को ले जाएं, उसमें देरी ना होने दें। तीसरा, जांच में साथ जाएं। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करें। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
1: हाँ, इलाज के बाद भी फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि डॉक्टर से मुलाकात, महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगने का मतलब ये नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: गलत। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: गलत। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर ट्रेंड हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
1: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून

कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। और अब दीजिए अनुमति, लेकिन सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बात होगी नवजात शिशुओं की सुरक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं, कुछ देरी कर देते हैं और कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से भाभी।
1: अरे धन्यवाद भाई और धन्यवाद रेडियो के उन सभी श्रोताओं को जो बहुत ही जरूरी विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका ये भी शुक्रिया करूंगी कि आपने बहुत जरूरी विषय उठाया है। आज नवजात बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ के इलाज की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल टीकन देवी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे SNCU की। पर ये SNCU है क्या और क्यों जरूरी है भाभी?
1: हाँ मैं ये आपको बताऊंगी और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगी जो कि समुदाय से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा और स्मार्ट मिलकर इस श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर विषय पर जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है आप लोगों को पूरी जानकारी हो। तो आज बाबू मैं आपको बताऊंगी कि ये SNCU क्या होता है। सबसे पहले SNCU का मतलब है स्पेशल न्यू वॉर्न केयर यूनिट, यानी खास तरह

0: का यूनिट है जो जिला अस्पताल या मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्सें, खास मशीनें बच्चे की निगरानी करती हैं। यह यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हो जाएं, कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों या सांस लेने में दिक्कत हो, पीलिया, संक्रमण या तेज बुखार से ग्रसित हों, जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म हों, उनके लिए भी यह यूनिट है। SNCU को ऐसे समझो, नवजात बच्चों की ICU, समझ रहे हैं ना भैया?
1: जी जी,
0: जहाँ हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
1: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
0: हाँ, गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं उसे SNCU में जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यही है।
1: टीकन देवी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
0: हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ आज भैया, नवजात में नीचे दिए गए किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे तुरंत SNCU यूनिट में भेज देना चाहिए। पहला लक्षण, दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त लगे या उसके हाथ पैर ढीले लगे, तेज सांस यानी 60 से ज्यादा प्रति मिनट सांस लेने में मुश्किल होना, धीरे धीरे सांस आना या छाती धसना, लगातार रोना या उल्टा हो जाना या बहुत ज्यादा सोना, जरा जरा सी देर में दौरे पड़ना या फिट्स, शरीर का बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाना, नाभि में पस पड़ जाना, लालिमा आ जाना या उससे बदबू आना, गंभीर पीलिया खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी आना और दूध पी के वापस निकालना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। अगर किसी नवजात में दिखाई दें तो बिल्कुल हल्के में ना लें, उसे तुरंत SNCU यानी बच्चों की जो ICU है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की
1: थी,
0: स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ले जाना चाहिए। वहाँ बच्चा डॉक्टर, नर्स और खास मशीनों की निगरानी में रहता है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही और मैं तो डर ही गया था कि जिस तरीके से आप लक्षण बता रहे हैं तो गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात याद ये रखना कि नवजात में देरी का मतलब खतरा है, तो इसलिए एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओं, इसे दिल में बांध लीजिए या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए, खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। टीकन देवी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
0: हाँ, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो ये पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक एक सेवा के बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहली जो सेवा है जो कि SNCU में दी जाती है, वार्मर, यानी नवजात बच्चा जब अपना तापमान नहीं संभाल पाता तो उसे वार्मर में रखा जाता है, जिससे उसका तापमान संतुलित किया जा सके। ऑक्सीजन और CPAP, अगर बच्चे को तुरंत सांस लेने में मुश्किल है तो CPAP से फेफड़ों को मदद मिलती है, यानी बच्चा सांस धीरे धीरे ले पाता है और सही कंडीशन में पहुंच पाता है डॉक्टर्स की निगरानी में। तीसरा, दवाइयां और एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसके लिए बच्चे को तुरंत दवा दी जाती है। फोटोथेरेपी, यानी पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी, जो बच्चे के पीलिया को दूर करने में मदद करती है। शुगर और फ्लूड मैनेजमेंट, लो शुगर अगर नवजात में हो जाती है तो ये बेहद खतरनाक संकेत होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है, डॉक्टर्स और नर्स के ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखा जाता है। फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद से दूध नहीं पी पा रहा या दूध पीने में दिक्कत कर रहा है या दूध को उल्टा निकाल रहा है तो एनजी ट्यूब से माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, जो कि उसके लिए बेहद कामगार साबित होता है। KMC यानी कंगारू मदर केयर, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे माँ उसके बेहद करीब है और बच्चा जल्दी ठीक होने लगता है। निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर घंटे में जांच, ये सब होता है इस केंद्र में। परिवार को सलाह दी जाती है कि कैसे दूध पिलाया जाए, कैसे बच्चे की साफ सफाई रखी जाए, कब बच्चे के पास वापस आना है और कब बच्चे के पास समय बिताना है। फॉलो अप डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है ये भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं। वहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, इतना भी लोगों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, जिसका हमारे समुदाय के लोगों को जरूर लाभ उठाना चाहिए।
1: जी वाह, इतना सब कुछ एक ही जगह है। लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ भैया?
1: जी।
0: सबसे खास बात तो ये है कि सारी दवाएं, सारी सुविधाएं, डॉक्टर और नर्स की सारी निगरानी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त मतलब आपको बस जानकारी होनी चाहिए और आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: मुफ्त, सच में मुफ्त? तो लोग समझते हैं कि अस्पताल में बहुत खर्चा होगा।
0: नहीं जी, ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। सरकार ने नवजात के इलाज को मुफ्त रखा है और सरकार इस कैंपेन को सामुदायिक रेडियो और स्मार्ट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। पहला, भर्ती। भर्ती होने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस। गरीबी या पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके, यही सरकार का साफ और सीधा संकेत है।
1: सीधा संकेत है, सीधा संदेश है। तो टीकन देवी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन परिवार क्या करे?
0: देखो, परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परिवार को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से नवजात के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे तो अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर की दवा बीच में ना रोकें, KMC जरूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोकर ही बच्चे को छुएं, 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, फॉलो अप की तारीख को कभी न छोड़ें, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें।
1: सही बात है। घर की जिम्मेदारी घर वालों की?
0: जी, घर वालों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। आज भाई, पैटर्न और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चे ठंड बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बार बार दूध चाहिए और वजन धीरे धीरे बढ़ता है। KMC तो ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
1: टीकन देवी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं थी?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बताती हूँ।
1: जी।
0: 4ANC चेकअप, IFA की गोलियाँ, TT-TD वैक्सीनेशन, रक्तचाप या शुगर की जांच, संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU में जाने से बच सकता है, यानी बच्चा ICU में, जो कि बच्चों की यूनिट होती है, उसमें जाने से बच सकता है।
1: जी, अगर बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो क्या करें टीकन देवी?
0: देखो, बच्चा अगर अचानक से बीमार पड़ जाए तो उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों को सीधे 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सभी सामान उसके अंदर रहते हैं। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बेहद जरूरी है। स्तनपान, दवा समय पर, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और सफाई का ध्यान रखना, और कोई भी खतरा दिखे या कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे बच्चे को परेशानी हो रही है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना।
1: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही?
0: बच्चा परिवार की जिम्मेदारी पहले है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की और फिर समाज की। परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से बच्चे के लालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं जो कि नवजात के लिए जरूरी हैं, उनकी भी जानकारी परिवार को होनी चाहिए। अब जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार और समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसे परिवार, समुदाय और सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित जागरूकता कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थागत प्रसव बढ़ाएं, इस बारे में भी बात की जा सकती है। नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं और बताएं कि अगर नवजात में लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट करें। नाभि पर तेल और घी लगाने की कभी सलाह न दें। स्वच्छता बढ़ाएं। मैं तो यही कहूंगी, जब सोच बदलती है तो पूरा गांव स्वस्थ होता है, और गांव स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, और जब समाज स्वस्थ होता है तो पूरा देश स्वस्थ होता है। तभी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका मोटिव पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन को बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम एक बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
1: धन्यवाद टीकन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ श्रोताओं का भी, आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
3: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। TB का इलाज सही से हो रहा है ना?
4: बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
3: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
4: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा? देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
3: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो TB लाइलाज हो जाएगी।
5: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से TB बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
3: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
4: कल नहीं, अभी।
5: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
9: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महावारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान, और वो भी लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आपके कल्याण के लिए, आपके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और हमारे बहुत से किसान बहन भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल प्रत्येक पात्र किसान भाई को 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और ये सहायता राशि सीधे किसान बहन भाइयों के बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें हर 4 महीने बाद किसान भाइयों को 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसान भाइयों को इस योजना के पैसों से खाद, बीज और अन्य साधन जुटाने में सहायता मिल जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि इस योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो खुद भी, आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अपने फोन के जरिए आप जाइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जो कि है pmkisan.gov.in। यहां पर जाकर के आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, जोत का ब्यौरा, यानी कि जो आपकी खतौनी है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि आपके नाम कितनी जमीन है, वो दस्तावेज, और साथ में आपके बैंक खाते की पासबुक, तभी आपका पंजीकरण होता है। और इसके बाद आपके पंजीकरण का ब्यौरा राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन किसान मित्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड, आपकी खतौनी और आपकी बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है और जो जमीन की खतौनी है उसमें नाम कुछ है, या बैंक की जो पासबुक है उसमें नाम कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और ना ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण होगा और तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, बहुत ही अच्छी ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि केंद्र, या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान बहन भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उसमें लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, दवाइयों की बात करें, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़्यादा लाग लगेगी। अब वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए? कई बार ऐसा होता है, कहीं अन्य जगह से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा ब्याज लगता है, जो कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब खेती करें तो कैसे करें। तो इसका सीधा समाधान है, सरकार ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी के नाम से ज्यादातर हमारे किसान बहन भाई इसको जानते हैं, परिचित हैं। तो जिन किसान बहन भाइयों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है बनवाने के लिए कि आपके नाम जो जमीन है, आप उसके कागज ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, और भी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता कर लीजिए कि हमको केसीसी बनवाना है तो किन किन दस्तावेजों की और आवश्यकता होगी। वहां पर आप सीधे मैनेजर साहब से मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका जो केसीसी है वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और फिर आपको खेती करने में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है और जितना पैसा आप निकालते हैं उसी पर ब्याज आपका लगता है। अगर बैंक के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता है, यानी कि आप पैसा समय से लेते हैं, समय पर जमा करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना वो बढ़ा दी जाती है। तो किसान मित्रों, अभी तक अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा। आप अपने नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं और वहाँ पर केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, और आइए अब आपको एक और देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या यूं कहें किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, इसके अलावा तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास पहले से ही किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किसान बहन भाइयों, आप भी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान से एक देशभक्ति रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है, ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में, पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय, गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: This is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
3: हिंसा को नो

नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हाँ मैं नारी हूँ। हरिराम जी माधवपुर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इसके साथ ही साथ वो दो गांव के मुखिया भी हैं। गांव में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, हरिराम जी बहुत ही सहजता के साथ उस समस्या का समाधान निकालते हैं। उनकी पत्नी रोहिणी एक गृहिणी है और वो घर के सारे काम करती है, परंतु रोहिणी पढ़ी लिखी नहीं है और उसको इस बात का बहुत मलाल है। रोहिणी सिर्फ घर के लोगों का ख्याल रखती है और घर के हर छोटे बड़े फैसले उनके पति हरिराम ही लिया करते हैं। रोहिणी और हरिराम जी के दो लड़के हैं, गोलू और अरुण, और एक लड़की जिसका नाम प्रीति है। हरिराम जी अपने दोनों लड़कों का दाखिला पास के एक कॉन्वेंट स्कूल में करा देते हैं, पर वो अपनी लड़की प्रीति का दाखिला किसी स्कूल में नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर प्रीति की माँ उसको पढ़ाना चाहती है। और एक सुबह

0: सुनिए जी, गोलू और अरुण के स्कूल से फोन आया था।
1: अच्छा, वैसे फोन किसने उठाया था?
0: मैंने ही उठाया था, वो बहुत देर से फोन बज रहा था तो सोचा उठा लूं।
1: अच्छा जी, बहुत सोचती हो तुम।
0: गलती हो गई, अब से नहीं करूंगी।
1: गलती? हजार बार मना किया होगा कि फोन न उठाया करो, न उठाया करो, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
0: माफ कर दीजिएगा, अब से ऐसा कभी नहीं होगा।
1: कितनी बार माफ करूं? कई बार बोला है कि फोन मत उठाया करो, फोन पे पता नहीं कौन है, कहां से बात कर रहा है, कौन कौन से मर्द फोन करते हैं, औरतों को फोन से दूर रहना चाहिए, पर तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुम्हें तो मजा आती होगी ना मर्दों से बात करने में।
0: आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है।
1: अब हमको न सिखाओ कि क्या बोलना है और क्या नहीं। ये बताओ, क्या कह रहे थे स्कूल वाले?
0: वो कह रहे थे कि 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है, उससे पहले मुझे और आपको मास्टर साहब से एक बार मिलना होगा।
1: ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
0: मुझे भी बुलाया है।
1: एक काम करो, तुम ही चली जाओ, हर एक काम में इनको कूदना है।
0: मैं तो बस।
1: देखो रोहिणी, साफ कह देता हूँ, तुम औरत हो और औरतों का काम होता है घर पे रहना, खाना बनाना, चौका चूल्हा देखना, समझी? वही देखा करो बस।
0: जी माफ करिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा।
1: अच्छा ही है अगर समझ जाओ तो।
0: अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे, हम गोलू और अरुण का एडमिशन तो स्कूल में करा रहे हैं, अगर प्रीति का भी एडमिशन स्कूल में करा देते तो बढ़िया रहता।
1: नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
0: बच्ची को बहुत बुरा लगेगा, उसके दोनों भाई स्कूल जाएंगे और वो नहीं जाएगी तो।
1: अरे बच्ची का मन रखने के लिए मैं वो नहीं कर सकता जो हमारे खानदान में आज तक नहीं हुआ। हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं।
0: मैं बाहर जाने की बात नहीं कर रही, मैं स्कूल जाने की बात कर रही हूँ।
1: ज्यादा जुबान मत चलाओ,

0: आओ जाके पानी लेके आओ।
1: एक बार प्रीति से भी पूछ लेते हैं, अगर उसका मन नहीं होगा स्कूल जाने का तो उसका एडमिशन नहीं कराएंगे।
0: क्या कहा? प्रीति से पूछ लूं? अब मैं प्रीति से और तुमसे पूछ के फैसला लूंगा? हिम्मत कैसे हुई ये तुम्हारी बात बोलने की?
1: जी माफ करिएगा, गलती हो गई।
0: चुप करो, दोबारा ऐसी बातें की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा।
2: अरे क्या हुआ हरिराम, क्या बात हो गई भाई, इतने गुस्से में क्यों हो?
0: अरे कुछ नहीं यार, ये तुम्हारी भाभी के बहुत पर निकला है, अब घर के फैसलों में मुझे इनकी और इनकी बेटी की सुननी पड़ेगी।
2: अरे अगर भाभी कुछ अच्छा सुझाव दे रही हैं तो सुनने में क्या दिक्कत है?
0: हाँ क्यों नहीं, अब औरतों के फैसलों को मैं मानूं, अब यही रह गया है। और ये कुछ बहुत अच्छा सुझाव नहीं, अपनी बेटी को पढ़ाने का सुझाव दे रही हैं और मेरे बेटों से उसकी बराबरी कराने की बातें कर रही है।
2: अरे ये क्या बात हुई, बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती और वो बेटों की बराबरी क्यों नहीं कर सकती? हरिराम तुम दो गांव के मुखिया होकर भी ऐसी बातें कर सकते हो, तुम्हारी सोच तो पूरे गांव की सोच है।
0: भाई तुम शहर वाले अपनी सोच अपने पास रखो, मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटी को और मेरे बेटों की बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं करानी।
2: अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी बहन रजनी की शादी का कार्ड देने आया हूँ। रजनी इसी गाँव की ब्लॉक में BDO है और यहाँ उसकी शादी अपने ही जिले के DPRO अधिकारी अभिषेक जी के साथ हो रही है। और पता है अभिषेक जी रजनी को UPSC की तैयारी कराने के लिए पास के कोचिंग क्लास में दाखिला दिलाएंगे और वो लोग एक पैसा भी दहेज नहीं ले रहे हैं।
0: क्या सच में वो लोग एक भी पैसा दहेज नहीं ले रहे
2: हैं? हाँ सच में, मेरी बहन खुद ही इस लायक है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है और वो इतनी सशक्त हमारे परिवार के सहयोग से ही हुई है। तो मैं ये तुमसे भी कहना चाहूँगा कि तुम भी अपनी बेटी प्रीति का पालन पोषण अपने बेटों की तरह ही करो और उसे भी आजादी दो खुल के जीने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और ये सहयोग हम पुरुषों को ही करना पड़ेगा, तभी हमारे घर की, हमारे गांव की, हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी। समझे हरिराम?
0: हाँ यार अशोक, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी प्रीति को गोलू और अरुण की तरह पढ़ने भेजूंगा और उसे भी आजादी दूंगा अपनी बात रखने की और मनचाहा काम करने की। सुनो रोहिणी, हम प्रीति का भी एडमिशन कराएंगे।
3: अरे वाह, किस स्कूल में?
0: अरे उसी स्कूल में जिसमें गोलू और अरुण का एडमिशन हुआ है।
3: ये तो बहुत बढ़िया होगा कि तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाएंगे।
0: हाँ हमारी भी टेंशन कम रहेगी तीनों एक साथ रहेंगे तो।
3: हाँ
0: अच्छा सुनो, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं आप?
0: हाँ माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, तुम्हें भी तो हमेशा ही डांटता रहता हूँ, कभी भी तुमसे ठीक से बात नहीं करता।
3: अरे कोई बात नहीं, पति हैं आप हमारे, हक है आपका हमें बोलने का।
0: नहीं रोहिणी, मुझे समझ में आ गया है कि औरतें भी समाज का आधा हिस्सा हैं और उनको भी हक है बराबरी का और इज्जत के साथ जीने का। तो अब से मैं कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, अब से तुम्हें भी पूरा हक है इस घर के फैसलों में भागीदारी का, समझी पगली?
2: ये हुई ना बात, इसी बात से आमिर खान की उस फिल्म का डायलॉग याद आ गया है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के।
4: चलिए हरिराम जी को तो ये बात समझ में आ गई कि नारी को भी हक है समानता के साथ जीने और शिक्षित होने का। तो हम सब के घर के आस पड़ोस में जरूर कोई न कोई हरिराम जी जैसे व्यक्ति मिलेंगे, तो हम सब का ये कर्तव्य है कि अपनी सोच के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने की कोशिश करें और महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का मौका दें। चलिए फिर अब आप सब से इजाजत लेने का समय आ चुका है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए

0: हिंसा को नो।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहां से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
6: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
5: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
6: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
7: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और यह भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
2: हिंसा को नो

सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।

हिंसा कई बार हमारे आसपास इस तरह छिपी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिससे हम सामाजिक जामा पहनाकर लोगों पे थोप देते हैं। इसमें भले ही सामने वाले के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ रही हों, कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं जिसका शीर्षक मेरा भी अस्तित्व।

0: ये कहानी है विनीता की, जिनके पति अशोक पास के ही एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं। विनीता के दो बच्चे हैं, प्रिया और अमन। विनीता एक गृहिणी है और उनका पूरा दिन घर के कामों में और बच्चों और पति के देखरेख में ही व्यतीत होता है। अशोक को शराब की बुरी लत है। वो रोज शाम को शराब पीकर आता है और विनीता के साथ मारपीट करता है, और ये सब प्रिया और अमन चुपचाप देखते हैं। एक शाम अशोक नशे में धुत होकर आता है और दरवाजा खटखटाता है।
1: आज फिर से आप शराब पीकर आ गए?
2: हाँ, पिए शराब तो।
1: कितनी बार मना किया है, मत पिया करिए, मत पिया करिए, पर आप मानते ही कहाँ हैं?
2: देखो, तुम ज्यादा मास्टर नहीं ना बनो, जब देखो तब ज्ञान देती रहती हो।
1: तो आप पीते ही क्यों हैं?
2: पीऊंगा, तुम्हारे बाप के पैसों की पीता हूँ क्या?
1: देखिए, आपको जो कुछ कहना है आप मुझे कहिए, लेकिन मेरे घर वालों को इसमें ना घसीटिए।
2: कहूंगा, तुम्हारा बाप एक नंबर का झूठा मक्कार आदमी है।
1: क्या झूठ बोला उन्होंने?
2: शादी में बोला था गाड़ी दूंगा, नाटक कर गया, नहीं दिया गाड़ी, भिखारी कहीं का।
1: हाँ, तो उस टाइम उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आपको गाड़ी दे। वैसे भी दहेज में बहुत सारा आप लोगों ने पैसा ले रखा है।
2: अरे हटो, तुम्हारा बाप और तुम्हारा पूरा खानदान, तुम सब के सब झूठे हो, बेईमान हो।
1: देखिए, मैं कह देती हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे खानदान वालों को, मेरे मायके वालों को कुछ भी ना कहा करिए। मैं कभी कहती हूँ आपके घर वालों को कुछ?
2: ज्यादा ज्ञान मत दो, चुपचाप दरवाजे पर से हट जाओ, हटो।
1: मैं तो हट जा रही हूँ, लेकिन घर में इस वक्त खाने को कुछ भी नहीं है। बच्चे दोनों शाम से ही भूखे बैठे हैं। अब क्या करूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तब से आपका ही इंतजार कर रही थी कि अब आएंगे आप, अब आएंगे आप, लेकिन आप तो शराब पी कर आए हैं।
2: घर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो बाहर से खा कर आया हूँ।
1: बच्चे भूखे बैठे हैं, उनको क्या खिलाऊं? घर में एक दाना भी राशन नहीं है और ना ही पैसे हैं कि मैं जाके खरीद के लेके आऊं।
2: मेरे पास भी पैसे नहीं है, हट जाओ यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे पैसे करने लगती है।
1: इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे भी कुछ करने दीजिए, ताकि घर में पैसों की कमी ना पड़े। ऐसे हमें दूसरों का तो मुंह ना देखना पड़े खाने के लिए।
2: क्या कहा तुमने? तुम कमाओगी, तुम बाहर जाओगी, जाहिल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की?
1: अब बस मुझे ही मारिएगा पीटिएगा, दो बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, ये ना जुगाड़ करिएगा कि कहाँ से खाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो भूखे भी सो जाऊंगी, लेकिन ये दो बच्चों का मैं क्या करूं? खुद तो शराब पी के आ गए, बाहर से खाना भी खा के आ गए, लेकिन हमारे तो बच्चे क्या खाएंगे इसका नहीं सोच रहे। हमेशा बस मुझे ही मारना होता है बस, और मेरे मायके वालों को कुछ न कुछ गालियां देनी होती हैं। क्या करूं मैं, बताइए आप ही, कहाँ से खिलाऊं बच्चों को?
2: अब तुम मुझे सिखाओगी, और ये क्या बकरी हो तुम, अब तुम कमाओगी, अपनी औकात में रहो, उसको भूलो मत, औरत हो औरत की तरह रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है खाना बनाना और जो मैं कहूँ उसे मानना। दोबारा ऐसी फालतू बातें की तो जुबान खींच लूंगा।
0: विनीता रोते रोते अपने बच्चों को साथ लेकर सो जाती है। सुबह उठकर वो रोज की तरह अपने काम करती है और अशोक भी अपने काम पर लग जाता है। तब तक विनीता की सहेली माधुरी आती है। विनीता के सर पर लगी चोट को देखकर वो उससे पूछती है। विनीता उसे पिछली रात की सारी बात बताती है। ये सब सुनकर माधुरी चौंक जाती है।
3: विनीता, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है और ये सब तुम चुपचाप सह रही हो, ये गलत है ना?
1: क्या सही क्या गलत बहन।
3: अच्छा तुम मुझे बताओ, ये सब कब से चल रहा है?
1: कब से क्या, बस जब से शादी हुई है इनका अक्सर ही ये हाल रहता है।
3: क्या अक्सर ही तुम्हारे पति तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं?
1: नहीं नहीं, अक्सर नहीं, बस जब ये शराब पी कर आते हैं तब ये मारपीट करते हैं।
3: अच्छा, और ये शराब कब कब पी कर आते हैं?
1: लगभग हर तीसरे दिन ये शराब पी लेते हैं।
3: इन सब के बारे में कभी तुमने अपने मायके वालों को बताया है?
1: उनको क्या बताना, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है।
3: हाँ ठीक है, पर तुम्हारे पति तुम्हें मारते हैं और ऐसे हालात हैं कि तुम और बच्चे भूखे सो जा रहे, इसके बारे में तो बताओगी ही ना।
1: मैं अपने मायके वालों से अपने पति की बुराई नहीं कर सकती।
3: तो मैं बात करूं तुम्हारे पति से?
1: अरे अरे नहीं नहीं बहन, तुम रहने दो।
3: अगर तुम भी बात नहीं करोगी और किसी और को भी बात नहीं करने दोगी तो ऐसे कैसे चलेगा?
1: छोड़िए ना आप ये सब, आप अपना बताइए, कैसी हैं आप?
3: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें ये सब सामान्य बात लग रही होगी विनीता, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है।
1: अरे रहने दो ना बहन, क्या तुम भी इस बात को लेके बैठ गई हो? छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो इसी के साथ शादी हो गई है तो पूरी जिंदगी ही झेलना है।
3: ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम सहेली हो मेरी और मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकती।
1: बहन हम कर भी क्या सकते हैं? ये जो आदमी होते हैं वो तो मालिक होते हैं ना औरतों के, वो जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। मारपीट करना हुआ या जो भी करना हुआ, वो हमारे मालिक हैं, वो जिस तरह से चाहे हमें रख सकते हैं। आखिर में खिलाते भी तो वही हैं।
3: तुमको खिलाने का डर है तो खुद क्यों नहीं कमाती?
1: बहन मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं कुछ करूँ, दो पैसे आए घर में। पैसे आएंगे तो थोड़ा ये झगड़ा भी कम होगा, लेकिन क्या करूँ, इनको तो पसंद ही नहीं है हमारा बाहर निकलना घर से। झगड़ा तो सही में इसी बात का है, सच बताऊँ तो तुम्हें।
3: बहन यही तो मैं तुमको समझा रही हूँ कि तुम भी इंसान हो, हक है तुम्हें अपने पसंद का काम करने का, अपने हिसाब से रहने का। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो बिल्कुल करो।
1: करना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन इनसे जब भी मैं इस बारे में बात करूँ झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा मारपीट पे ही आके रुकता है। एक तो इनको लेकिन इनसे जब भी मैं इस बारे में बात करूँ झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा मारपीट पे ही आके रुकता है एक तो इनको हर तीसरे दिन पी के आना है। अब क्या बताऊँ बहन, छोड़ो, जाने दो, बहुत परेशान हूँ मैं।
3: वही मारपीट तो बंद करानी है तुम्हारी। बताओ इतना ज्यादा चोट लगा है तुम्हें, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। कब तक सहोगी ये रोज रोज की मारपीट तुम? आखिर तुम भी तो एक इंसान हो, चोट तो तुम्हें भी लगती है ना?
1: हाँ पर कर भी क्या सकते हैं।
3: अच्छा ठीक है, पर पहले तो अपने पति को प्यार से समझाओ, अगर फिर भी ना माने तो पुलिस की सहायता लो या फिर किसी महिला कल्याण संस्थान से मदद लो। पता है सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा पर कई कानूनी प्रावधान लाई है, और सबसे बड़ी बात बहन कि तुमको भी तो अपने आत्मसम्मान से जीने का पूरा हक है। तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारे पति से ही नहीं, तुम्हारे खुद से भी है।
1: बहन तुमसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिली, अब मैं अपने पति से इस बारे में बातचीत जरूर करूंगी और उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं पुलिस की या फिर महिला कल्याण संस्थान की मदद जरूर लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन।
3: ये हुई ना बात बहन, नारी हैं हम और हमारा भी अस्तित्व है।
0: चलिए विनीता को तो समझ आ गया कि उसको अपने साथ हो रही हिंसा के विरोध में जाके अपने पति से बात करनी चाहिए। तो हम सब के घर के आस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई अशोक जरूर मिलेगा। तो हम सब का ये कर्तव्य है कि अपनी सोच के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने की कोशिश करें और महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का मौका दें। आप सब से इजाजत लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं हिंसा को नो के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।

अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहां से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Vasudhaiva Kutumbakam. Soro Sharda.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। सुनो
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और श्रोताओं अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक विचार जिसे भेजा है
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे जी ने और वो लिखते हैं
3: किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह ही बनिए, खुशी नहीं सुकून भी मिलेगा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।
3: तो गुजरात से महादेव हरि भाई देसाई,
2: दिल्ली से रेशमा और शकीला अंसारी,
3: मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर,
2: ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज,
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: धन्यवाद बहुत बहुत संदेश भेजने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए।
3: तो प्रस्तुत है अब हमारी आपकी जानी पहचानी लोकप्रिय श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी।
2: आज इस कड़ी में एक बार फिर से हम बात करेंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना की।
3: श्रोताओं भारत उन दिनों उपग्रह बनाने की तकनीक में दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल नया था। डॉक्टर कलाम के निर्देशन में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा दल इस योजना पर काम कर रहा था।
2: 10 अगस्त 1979 को स्वदेशी रॉकेट SLV-3 यानी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण होना था। 23 मीटर लंबा और 17 टन भारी रॉकेट तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के लिए तैयार था।
3: डॉक्टर कलाम के शब्दों में टेक ऑफ वॉज वेरी स्मूथ, फर्स्ट स्टेज वॉज ब्यूटीफुल, इन सेकेंड स्टेज रॉकेट स्टार्टेड स्पिनिंग एंड इट फेल इन द बे ऑफ बंगाल, वी फेल्ड इन आवर मिशन।
2: बेशक वो असफल हुए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
3: डॉक्टर कलाम के निर्देशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा फिर से SLV-3 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था।
2: इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर कलाम अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में इस घटना के अनुभव को साझा करते हुए लिखते हैं
3: असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हमें कभी भी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए।
2: उनके निर्देशन में ही अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई स्वदेशी मिसाइलें बनाई गईं, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है।
3: तो श्रोताओं अब आज हमने जो जानकारी आपके साथ साझा की उसी से आज का प्रश्न
2: जी
3: आज का प्रश्न है
2: भारत ने पहली बार किस उपग्रह को SLV-3 द्वारा लॉन्च किया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं
3: भारत ने पहली बार किस उपग्रह को SLV-3 द्वारा लॉन्च किया था।
2: और आइए अब बढ़ाते हैं एक कदम आज के कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं पहला कार्यक्रम गेंद और बल्ला।
3: श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको ले चलेगा दूर एक घने जंगल में जहां जुटे हैं ढेर सारे पशु पक्षी और लेकर तैयार हैं गेंद और बल्ला। आइए सुनते हैं कौन जीत रहा है इस मजेदार मैच में।

0: एक दिन हाथी, भालू, घोड़ा और ऊंट जंगल में आराम कर रहे थे। तभी पास के गांव से बंदर गेंद बल्ला उठा लाया।
1: बंदर बोला, हाथी भैया आओ खेलें गेंद और बल्ला, आओ खेलें
2: गेंद और बल्ला।
0: तभी भालू, घोड़ा और ऊंट भी बीच में कूद पड़े।
1: भालू, घोड़ा, ऊंट भी बोले, हम खेलेंगे गेंद और बल्ला, हम खेलेंगे
2: गेंद और बल्ला।
0: और सभी जानवर एक जगह जमा हो गए।
1: मिलकर सभी ने टीम बनाई, चले खेलने गेंद और बल्ला, चले खेलने
2: गेंद और बल्ला।
0: फैसला हुआ कि हाथी बल्ला पकड़ेगा और बंदर गेंद फेंकेगा।
1: हाथी ने जब बल्ला थामा, लगे खेलने गेंद और बल्ला, लगे खेलने
2: गेंद और बल्ला।
1: ये हुई ना बात।
3: बच्चों, फिर क्या हुआ होगा? सोचो सोचो सोचो।
0: बंदर की हर गेंद को पीटे हाथी बोला गेंद और बल्ला, हाथी बोला
2: गेंद और बल्ला।
0: हाँ,

0: चौके छक्के लगे बरसने, सबसे अच्छा गेंद और बल्ला, सबसे अच्छा
1: गेंद और बल्ला।
2: हाथी ने बल्ले से गेंद को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया। ऊंट और घोड़े की हालत खराब हो रही थी क्योंकि
0: ऊंट और घोड़ा दौड़कर हारे। खूब दौड़ाता गेंद और बल्ला, खूब दौड़ाता
1: गेंद और बल्ला।
2: बच्चों, तभी एक घटना घटी जिससे सभी गेंद और बल्ला वहीं छोड़कर भागने लगे। जानते हो क्या हुआ होगा? बोलो बोलो, क्या हुआ होगा? हैं?
3: फिर क्या हुआ भैया?
4: फिर क्या हुआ भैया?
2: सोचो सोचो, क्या हुआ होगा? हैं?
1: सोचते हैं।
0: हुआ ये, लगी गेंद जब शेर को भैया,
5: क्या शेर शेर शेर
0: हाँ, शेर को लगी, छोड़कर भागे गेंद और बल्ला, छोड़कर भागे
1: गेंद और बल्ला।
2: बजाओ ताली इसी बात पर।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गेंद बल्ला, अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, बाल कलाकार जीशा हिरण्या, नमन निशांत, सार्थक और वान्या, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग अमित कुमार, परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गेंद और बल्ला।

0: और अब सुनते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक रोचक कार्यक्रम सपेरा।
1: गांधी जी जब छोटे थे तब वह सांपों से बहुत डरते थे। वह अंधेरे में अकेले नहीं जा सकते थे। उन्हें लगता था कि अंधेरे में भूत प्रेत चोर और सांप छिपे हुए हैं। 35 वर्ष की आयु में गांधी जी एक प्रकार से वानप्रस्थी हो गए थे और आश्रम में रहने लगे थे। उनके आश्रम में रहने के लिए शुरू में कोई झोपड़ी या कुटिया नहीं थी। आश्रम एक बड़ा सा अहाता था जिसमें एक कुआं था, खेती के लिए काफी जमीन थी और एक बड़ा बागीचा था। शहर की गंदगी और शोरगुल से दूर यह एक शांत स्थान था। गांधी जी अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रम के लिए सस्ती बंजर भूमि खरीदी और अपनी मेहनत से उसमें खेत और बाग बनाए। फीनिक्स बस्ती, टॉलस्टॉय बाड़ी, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम और सेवाग्राम, इन सभी आश्रमों में सांप बहुत थे। रहने के लिए झोपड़ी बनने के पहले आश्रम वासियों को तंबुओं में रहना पड़ता था और बाल बच्चों के साथ ऐसी वीरान जगह में रहना जोखिम का काम था। किसी दिन खलिहान की छत से कोई सांप लटकता दिखाई पड़ता तो किसी दिन साइकिल के पास दो सांप गेंडोरी मारे पड़े दिखाई पड़ते। कभी कभी सोने के स्थान के पास भी सांप घुस आते थे। सांपों का आना रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए, यह बहुत बड़ी समस्या थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और कट्टर वैष्णव थे। वह बीमारी में भी अपने बेटे या पत्नी की या अपनी जान बचाने के लिए अंडा, मांस का शोरबा या ऐसी दवा नहीं लेते थे जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई हो। गांधी जी की सांपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। कैलन बाग से उन्होंने विषैले और निर्विष सांपों की पहचान करना सीखा। इससे बरसों पहले दक्षिण अफ्रीका की बात है। वहां जेल में गांधी जी के मसूड़ों में खून निकलता था। एक नीग्रो कैदी उनकी सेवा करता था। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और जो कुछ बात करनी होती इशारों से करते थे। एक दिन वह नीग्रो कैदी दर्द से चिल्लाता हुआ उनके पास आया। पूछने पर गांधी जी को पता चला कि उसकी उंगली में सांप या किसी कीड़े ने काट लिया है। उन्होंने तुरंत जेल के अस्पताल को पुर्जा भेजा। वह जानते थे कि जहरीले खून को निकाल देने से लाभ होता है। क्योंकि कोई साफ चाकू उस समय नहीं मिला, इसलिए कटी हुई उंगली में मुंह लगाकर वह जहर चूसने लगे। उनको मालूम था कि जख्मी मसूड़ों वाले मुंह से जहर को चूसना खतरनाक है, लेकिन उस नीग्रो की पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई और वे रुके नहीं। गांधी जी जानते थे कि सब सांप जहरीले नहीं होते और न हर सांप के काटने से मौत ही होती है। केवल 12% सांप जहरीले होते हैं। गांधी जी अपने देशवासियों को, विशेष रूप से गांव वालों को, सांपों के बारे में सही जानकारी देना चाहते थे जिससे वे उन निर्विष सांपों को न मारें। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस विषय में सांपों के चित्र देकर कुछ लेख भी प्रकाशित किए। एक बार उन्होंने हरिजन में लिखा, हम जहरीले और गैर जहरीले सांपों में भेद नहीं कर पाते और इसीलिए बिना सोचे समझे सभी सांपों को मार डालते हैं। कई बार सांप का काटा आदमी जहर के कारण नहीं बल्कि भय के कारण मर जाता है। जहरीले सांप भी जब तक पैरों से दब न जाए या उन्हें सताया न जाए तब तक नहीं काटते। सांप खेतों से चूहे या कीड़े आदि का सफाया करते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल, खेतों का रखवाला कहा जाता है। नागपंचमी के दिन गांव में माताएं सांपों के लिए सकोरे में दूध भरकर रखती हैं। इस प्रकार सांपों के प्रति मैत्री दिखाई जाती है। सात फनों वाले शेष नाग के ऊपर शयन करते हुए विष्णु का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह यह दिखाता है कि अपने सर पर फन काढ़े सांप की शैया पर भगवान किस प्रकार निश्चित भाव से लेट सकते हैं और ईश्वर की दृष्टि में सांप कोई खतरनाक जीव नहीं है। गांधी जी ने एक बार अपने एक दार्शनिक मित्र से पूछा, अगर किसी साधक पर सांप आक्रमण कर दे तो उसे क्या करना चाहिए? मित्र ने उत्तर दिया, उसे सांप को मारना नहीं चाहिए और यदि सांप काटे तो उसे काटने देना चाहिए। गांधी जी स्वयं सांपों को कभी चोट नहीं पहुंचाते थे और सांपों ने भी उनको या उनके आश्रमवासियों को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। गांधी जी के किसी भी आश्रम में कभी किसी व्यक्ति की सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई। कई बार गांधी जी के शरीर से सांप छू गए लेकिन सौभाग्यवश उनको कभी काटा नहीं। एक दिन की घटना है, शाम का समय था और गांधी जी प्रार्थना में बैठे हुए थे। उस दिन उनका मौन था। उसी समय एक सांप वहां आ गया और गांधी जी की तरफ बढ़ने लगा। गांधी जी के साथी एकदम घबरा उठे। हलचल देखकर सांप भयभीत हो गया और बचने के लिए गांधी जी की गोद में चढ़ गया। गांधी जी ने लोगों को शांत रहने के लिए इशारा किया और अपनी प्रार्थना जारी रखी। सांप सरक कर गोद से उतरा और चुपचाप चला गया। गांधी जी से लोगों ने पूछा कि सांप चढ़ने पर आपको कैसा लगा था? गांधी जी ने उत्तर दिया, एक क्षण तो मैं घबराया, इसके बाद मैं फिर शांत चित्त हो गया। अगर सांप मुझे काट भी लेता तो मैं कहता, इसे मारो मत, इसको हानि न पहुंचाओ, इसे जाने।

0: सपेरा। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब सुनते हैं एक मजेदार जनजातीय लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम खरगोश और खजूर।
1: ये कार्यक्रम बता रहा है कि खरगोश खजूर की झाड़ियों के आसपास क्यों दिखाई नहीं देते।

0: अरे सुनो ना विकास, वहाँ क्या कर रहे हो?
1: जी दादाजी, दादाजी देखिए विकास भैया के पास क्या है।
0: क्या है?
2: खरगोश दादाजी, खरगोश।
0: अरे देखो तो, यहाँ कहाँ से आ गया?
1: भैया के एक दोस्त ने दिया है।
3: ओ क्यों भाई, तू ही था जो आदमियों को खा जाता था?
1: खरगोश और आदमियों को खा जाता था?
2: अरे ये क्या कह रहे हैं दादाजी।
3: हाँ भाई, जब मैं छोटा नागपुर में था तो वहाँ एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी मैंने।
1: हमें भी सुनाइए ना दादाजी।
2: हाँ दादाजी सुनाइए ना।
3: ये कहानी है छोटा नागपुर की। कहते हैं कि उन दिनों खरगोश हाथी जितने बड़े होते थे।
4: हाथी जितने बड़े?
3: हो भारी भरकम शरीर, पहने पहने नुकीले दांत, एक चपट्टा मारा और आदमी खत्म। इनकी सेनाएं चलती थी, पूरे के पूरे गांव को घेर लेती थी।

0: दुनिया में एक दिन खरगोश ही खरगोश रहेंगे, आदमी का नामो निशान मिट जाएगा।
1: तो आप लोग बताएं कि हमें क्या करना चाहिए।
2: अब तो झकड़ी पहान के पास ही जाकर खरगोशों से बचने का उपाय पूछना चाहिए।
3: हाँ, ये ठीक रहेगा। कहते हैं झकड़ी पहान की उम्र ही कम से कम 200 साल है।
2: 200 साल?
3: हाँ, वो जानवरों की बोली भी समझते हैं।
4: हाँ, और गांव में जब भी कोई विपत्ति आई है उसने हमेशा बहुत अच्छी सलाह दी है।
1: तो ठीक है, तय रहा, कल सवेरे हम सब मारा भारी पहाड़ पर पहान से मिलने चलेंगे।
2: मारा भारी पहाड़
3: जी, मुझे तो डर लगता है।
2: मेरे दादाजी बताते थे कि वह एक 7 कोस गहरा कुआ है, वो दागोन राजा का मुंह है। वहां से जब आग निकलती है तो जमीन हिलती है
3: और वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। जंगल जंगल, दल दल, सांप।
1: वो तो है, लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं है। अच्छा सुनो, कल सब अपनी मशाले और नगाड़े लेकर आना। एक साथ ढेर सारे लोग चलेंगे। ठीक है, सब लोग मिलेंगे।

0: रास्ता कठिनाइयों से भरा था। कभी आंधी आई, कभी तूफान, नदी नाले जंगलों को पार करते लोग पहान के पास पहुंचे।
1: पहान जी, अब आप ही हमारी मुसीबत दूर कीजिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे।
2: क्या मुसीबत है तुम्हारी?
1: भगवान, भयानक खरगोशों ने हमारा जीवन दुभर किया हुआ है। वो मनुष्य को मारते हैं, उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह मनुष्य मरते रहे तो एक दिन सारे मनुष्य समाप्त हो जाएंगे।
2: खरगोशों की ये मजाल, मैं अभी उनके मुखिया को बुलवाता हूँ। सेवक, जाओ खरगोशों के मुखिया को बुला कर लाओ। मनुष्यों की शिकायत है कि तुम खरगोश उनको जान से मार देते हो।
3: महाराज, हम खरगोश भी क्या करें, आखिर मनुष्य हमारा भोजन जो है।
2: ओ, भोजन का अर्थ ये तो नहीं है कि तुम पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगो, मनुष्यों का जीना मुश्किल कर दो, उनकी फसलें चौपट कर दो। ये भी तो सोचो कि यदि इतनी तेजी से मनुष्य मरते रहे तो एक दिन तुम्हारे पास खाने को बचेगा क्या।
3: महाराज, आपकी नाराजगी ठीक है, बताइए मैं अपने खरगोशों को समझाने के लिए क्या करूं।
2: गांव वालों, बताओ कि खरगोशों को क्या सजा दी जाए।
4: आप जो ठीक समझे जी, हम तो
1: भगवान आप ही तय करें। हम ये नहीं चाहते कि खरगोश धरती से नष्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि वो रहे, मगर हमें तंग ना करें।
2: ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अच्छा, आज एक समझौता कर लेते हैं। खरगोश शिकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खजूर की पतझड़ का इंतजार करना होगा, और जब तक खजूर की पत्तियां नहीं गिरती तब तक उन्हें कंदमूल और साग पर गुजारा करना होगा।
0: बेचारे खरगोश रोज खजूर के पेड़ के पास आते, वो उस पर फल लगते देखते, लोगों को फलों से गुड़ बनाता देखते, औरतों को पत्तियों से पंखा और चटाई बनाते देखते, मगर उन्हें एक भी खजूर का पत्ता झड़ता नहीं दिखाई दिया।
5: दादाजी, तो इतने दिनों तक बेचारे खरगोश भूखे रहे।
0: हाँ, कुछ समय तक तो किसी प्रकार चलता रहा, पर जब बहुत इंतजार के बाद भी खजूर सूखा नहीं तो वो कंद मूल फला

0: आदि खाने लगे। कहते हैं कि तभी से खरगोश शाकाहारी भी हो गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उसका आकार भी छोटा हो गया। खरगोशों के मुखिया की मूर्खता पर सभी खरगोश नाराज हो गए और फैसला किया कि अब वे कोई राजा या मुखिया नहीं चुनेंगे, और इसलिए खरगोशों का कोई राजा नहीं होता।
1: दादाजी, खजूर की पत्तियां झड़ने का क्या मतलब?
0: शायद इसलिए कि एक तो खजूर की पत्तियां आसानी से सूखती नहीं है, यदि वो सूख भी जाएं तो झड़ती मुश्किल से है।
2: तो खरगोश क्या हमेशा खजूर के पेड़ों को देखते रहते थे?
0: आदिवासी लोग ऐसा विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि आज भी खरगोश झाड़ियों में छिपे खजूर के पत्तों के झड़ने का इंतजार करते रहते हैं।
1: बेचारा नन्ना सा खरगोश।

0: खरगोश और खजूर, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, अब हमारा समय हो चला है, इसलिए अगले सप्ताह आपसे एक बार फिर से भेंट करने की आज्ञा चाहेंगे। तो अजीत
1: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवा

0: छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.
5: वसुधैव

0: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी।
1: कभी खुशी कभी

0: मम्मी मम्मी मम्मी कहाँ हो आप?
1: क्या हुआ मानव, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मैं यहाँ रसोई में हूँ।
0: मम्मी इधर आओ ना फटाफट।
1: क्या है बोल?
0: मम्मी
1: हाँ,
0: क्या आज इस्लाम अंकल वापस जा रहे हैं?
1: हाँ बेटा, आज उनकी कार्यशाला खत्म हो रही है ना, इसीलिए जा रहे हैं।
0: और इसीलिए मम्मी सुबह सुबह उठकर उनके सफर के लिए खाना बना रही हैं।
1: अरे मानव क्या हुआ, तू क्यों उदास दिख रहा है?
0: लो, जब इस्लाम अंकल आ रहे थे तो उनके डर से परेशान, और जब जा रहे हैं तो उनके जाने से दुखी।
2: अरे भाई कौन दुखी हो रहा है?
0: कुछ नहीं पापा, अपना मानव आज इस्लाम अंकल, ब्रज अंकल और अल्पना आंटी के जाने पर मुंह लटकाए है।
1: अरे मानव, कोई जाता है ना तो उसे खुशी खुशी विदा करते हैं, मुंह लटका कर नहीं।
0: पर मम्मी।
2: और हाँ बेटा, खुशी से इसलिए क्योंकि उससे फिर मिलना है। अब देखो, तुम दुखी होगे तो जाने वाला भी दुखी हो जाएगा ना।
0: और वैसे भी मानव, उन सबको उनके घर के लोग भी तो याद कर रहे होंगे ना। वो तो ठीक है दीदी, पर अभी तो मुझे इस्लाम अंकल से इतनी सारी बातें करनी थी, फिर पता नहीं वो कब मिलेंगे।
3: अरे मानव, ज्यादा बातें करने का मन करे तो उनके घर फोन कर लेना।
0: Exactly. हाँ, और भी मन करे तो उन्हें घर मिलाना। पर जो भी हो, मुझे किसी का जाना अच्छा नहीं लगता।
1: ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है मानव। बेटा, बिछोड़ने का दर्द तो सबको होता है, पर फिर मिलने की खुशी भी तो होती है ना।
3: मानव ऐसे नहीं होता भाई, कोई
0: पर भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं।
3: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आई आई आई आई।
0: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते विवेक और सूर्य प्रकाश, सृष्टि, सबको भाई मेरी नमस्ते। देखिए हम सुबह सुबह आ गए।
0: हाँ, वो भी जाने के लिए।
4: यार सूर्य प्रकाश, ये तुम्हारा छोटा बेटा पता नहीं क्यों हमेशा मुंह फुलाए मिलता है।
5: ठीक कहा डॉक्टर इस्लाम आपने, हमने भी इसे हमेशा दुखी परेशान ही देखा है।
6: क्या बात है मानव, क्या सुबह सुबह डांट पड़ी?
0: क्या आंटी, क्या कोई सिर्फ डांट खाकर ही दुखी हो सकता है?
4: ओ भाई, मामला गंभीर लगता है।
6: अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस आप लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए जरा दुखी है मानव।
4: अच्छा तो ये बात है, हमारा मानव तो हमारे प्यार में दुखी है।
5: हमसे बिछुड़ने का दुख है।
4: पर मानव, ये हवाएं, ये महासागरों का पानी, ये भूमि, ये भी रोज एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, दूर जाते हैं, पर दुखी तो नहीं होते।
6: पता है क्यों मानव? क्योंकि ये सब जानते हैं कि फिर दोबारा मिलना भी तो है।
0: पर आंटी, हवाएं बिछुड़ती कहाँ है, साथ साथ ही तो बहती हैं।
5: अरे मानव बेटा, हवा का तो पता ही तब लगता है जब वो चलती है, और जब वो चली तो यानी दूर गई।
0: पर अंकल, हवा दूर जाती कहाँ है और ये चलती कैसे है?
4: ओहो, तो असली वजह ये है। मानव हमसे महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंध में हवाओं की गतिविधि कैसी होती है ये जानना चाहता है।
0: पर मुझे आपके जाने का भी दुख है।
4: देखो भाई, दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, और दुख तो जीवन में थोड़े ज्यादा ही हैं।
5: अरे तो दुखी हुए तो कौन सा तीर मारा है।
4: भाई देखो, ऐसा है कि अभी ट्रेन जाने में समय है, तो चलो तब तक मानव को थोड़ा हवाओं, सागर, भूमि के आपसी रिश्ते को और समझा दें। अबे क्यों, क्या कहते हैं?
0: हाँ अंकल, ये ठीक रहेगा, और मेरे भी कुछ सवाल है, मैं भी पूछ लूंगी। हाँ।
6: चलो ये बढ़िया रहेगा, क्यों मानव?
0: जी आंटी।
5: मानव, पर तुम्हें मन से और खुशी खुशी सुनना होगा इसे, फिर इसमें तुम्हें इन हवाओं और पानी के बिछुड़ने का दुख और मिलने की खुशी भी पता चलेगी।
0: वो कैसे अंकल?
6: बस सृष्टि, तुम सुनते जाओ
7: और साथ साथ नाश्ता भी करते जाओ।
4: वसुधा, वसुधा भाभी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है।
0: भाई साहब, स्पेशली आपके लिए इडली सांभर।

0: नारियल की चटनी जो आपने बनाई ना बहुत ही बेहतरीन है,
1: तो बनाई है।
0: मैं एक बार केरल में गया था एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ खाई थी ऐसी चटनी,
1: खूबसूरत।
2: उसके बाद ऐसी खाने को दोबारा मिली ही नहीं।
0: तो भाई हाँ, ये हवा की चादर जो हमारी धरती के आसपास लिपटी हुई है इसे वायुमंडल कहते हैं।
1: और इस वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं जो मुख्यतः हमें बाहरी अंतरिक्ष के कई प्रहारों से बचाती हैं।
2: भाई हवाएं तुम्हारे धुले हुए गीले कपड़े सुखाती हैं, शक्तिशाली व्यापारिक हवाएं महासागर पार करवाती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद जेट स्ट्रीम यानी जेट धारा अपने हर घुमाव से धरती का मौसम बदलती है।
1: और ये सब धरती के वायुमंडल की गतिविधियों को दर्शाता है।
0: सूरज की गर्मी से गर्म हुई भूमध्य रेखा से शक्तिशाली हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं और बाकी बची धरती को ऊष्मा पहुंचाती हैं, और साथ ही साथ धूल मिट्टी को पूरी पृथ्वी पर इधर से उधर करती हैं।
1: और महासागरों के ऊपर से होती हुई हवाएं अपने साथ महाद्वीपों पर नमी लाती हैं, जिससे बारिश और हिमपात होता है।
3: पर ये हवाएं चलती कैसे हैं?
2: मानो बेटा, हर हवा इसलिए चलती है क्योंकि सूरज पूरी धरती को एक जैसा गर्म नहीं कर पाता।
1: धरती का वायुमंडल सूरज से सीधे ऊष्मा बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाता है। असल में सूरज पहले धरती को गर्म करता है और ये धरती अपने ऊपर बहती इन हवाओं में ये ऊष्मा छोड़ देती है।
3: ये तो हमें पता है आंटी कि धरती पहले गर्म होती है और इससे निकली ऊष्मा से हवा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है।
2: वाह सृष्टि वाह, शाबाश। अच्छा आगे क्या होता है?
3: अंकल आगे अब अंकल, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठना शुरू करती है। इस गर्म हवा के ऊपर उठने से नीचे एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है जो ठंडी हवाओं को खींचता है।
0: अरे बहुत खूब सृष्टि बेटा, ये सब तुमने कैसे जाना?
3: अंकल कुछ आपने बताया था और बाकी का विवेक भैया ने बता दिया था।
1: वाह भाई वाह, बहुत खूब विवेक।
4: थैंक यू आंटी।
1: अच्छा सृष्टि ये बताओ, ये ठंडी हवा जो गर्म हवा की जगह लेने चली आती है ये कहाँ से आती है?
5: ये मैं बताऊँ आंटी?
1: हाँ हाँ बताओ।
5: ये ठंडी हवा वहाँ से आती है जहाँ या तो धरती ने सूरज से आती गर्मी को जरूरत से कम सोखा हो या फिर सोखी गई गर्मी को वायुमंडल की ओर ना छोड़ा हो, है ना?
3: जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में होता है।
6: करेक्ट, बिल्कुल सही।
2: भाई सृष्टि और मानव तो बहुत होशियार हैं।
1: भाई साहब ये होशियार हैं और इन्हें होशियार बनाता है विवेक।
4: मैं तो बस इन्हें सब बताता रहता हूँ, अब ये याद रखते हैं तो इनकी होशियारी है।
0: भाई सूर्य प्रकाश जी, आपके तो तीनों बच्चे कमाल के हैं। भाई
1: हाँ तो भाई, जैसा सृष्टि और मानव ने अभी बताया ये कई स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसा हमने पिछली बार बताया था, स्थानीय स्तर पर यानी सागर से तट और तट से सागर की ओर जाने वाली हवाएं, या फिर वैश्विक स्तर पर जिसमें गर्म भूमध्य रेखा से हवाएं ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की यात्रा करती हैं। हाँ।
3: और इनसे पूरे वायुमंडल और धरती का एक पूरा संचरण बनता है ना?
2: हाँ सृष्टि, पर ये वायुमंडल का संचरण होता क्यों है?
4: अंकल मैं बताऊँ?
2: हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम ही बताओ।
4: अंकल जैसे आपने बताया था कि महासागरों में संचरण बड़े बड़े पाश यानी गायर के द्वारा होता है, इसी तरह धरती का वायुमंडल भी मुख्यतः तीन बड़े बड़े लूप या कहें पाश में संचारित होता है। पहला है हेडलेस सेल, दूसरा फेरल सेल, और तीसरा पोलर यानी ध्रुवीय संचरण। ठीक
1: भाई, वाह विवेक वाह, तुमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, शाबाश विवेक।
4: थैंक यू आंटी।
1: भाई अपने विषय के अलावा अन्य विषयों की भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए।
0: पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो रखनी ही चाहिए। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता और विकसित होती है।
2: अच्छा तो अब ये समझें कि ये तीन तरह के संचरण कैसे बनते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर का वायुमंडल ठंडा होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर गर्म।
3: पर अंकल
5: इन इलाकों के नीचे तो धरती भी ठंडी और गर्म होती है, तो इसमें क्या खास बात है?
6: लगता है मानव का दुख कुछ कम होने लगा है।
0: बस ऐसे ही होना चाहिए, ना किसी बात पर ज्यादा दुखी ना किसी बात पर ज्यादा खुश। अच्छा बताओ, अगर पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं तो क्या होता?
4: तो फिर अंकल ध्रुवीय क्षेत्रों का वायुमंडल ठंडा और ठंडा होता चला जाता और भूमध्य रेखा का वायुमंडल और गर्म होता चला जाता।
2: बिल्कुल सही विवेक। पर असल में होता क्या है कि धरती की सतह से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडे ध्रुवीय इलाके की ओर चलती हैं और ठंडी हवाओं को धक्का देती हैं। फिर ये ठंडी हवाएं धरती की सतह से होती हुई भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं।
1: और इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं और इस कारण पृथ्वी का तापमान ज्यादा असंतुलित नहीं हो पाता।
0: अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर धरती अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो हवाओं का क्या होता?
3: अंकल तब भी हमारा वायुमंडल भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक संचरण करता।
0: शाबाश। पर धरती पर अपनी धुरी पर ना घूमने के कारण हवाओं के छह लूप नहीं बनते।
5: छह लूप? कौन से छह लूप?
2: अरे भाई हेडले सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय संचरण, ये नहीं होते ना।
5: पर अंकल ये तो तीन ही है।
4: अरे मानव ये तीन उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं और तीन दक्षिणी गोलार्ध में। अब समझा कितने में लूप?
5: समझा, छह हुए।
6: बिल्कुल सही।
1: हाँ तो दोनों गोलार्धों में बनने वाले ये तीन तीन लूप तुम जानते ही हो कि कोरियोलिस बल के कारण बनते हैं।
3: हाँ हाँ आंटी ये तो पता है।
1: तो बस इसी कोरियोलिस बल की वजह से पृथ्वी को ये अनोखा वायुमंडलीय संचरण मिला। हेडले सेल में गर्म हवा भूमध्य रेखा से उठती है और 30 डिग्री अक्षांश पर जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ये गर्म हवा जो अब तक कुछ ठंडी हो चुकी होती है नीचे की ओर गोता लगाती है और काफी सारी हवा वापस भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है। ये पाश हेडले सेल कहलाता है।
2: हाँ, फिर भी बाकी कुछ बची हवाएं ध्रुवों की ओर चल देती हैं और करीब 60 डिग्री अक्षांश पर ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं से टकराती हैं। फिर ये थोड़ा ऊपर उठकर दोबारा भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इस पाश को फेरल सेल कहते हैं।
0: और फिर जो ध्रुवों से आने वाली हवाएं हैं वो भी धरती की ऊष्मा सोख कर ऊपर उठती हैं और वापस अपने उत्पत्ति के स्थान यानी ध्रुवों की ओर चल देती हैं। इसे ध्रुवीय संचरण सेल कहते हैं।
5: अरे वाह ये तो कमाल है।
0: अरे मानव बेटे कमाल तो ये है कि ये सभी हवाएं मिलती हैं और फिर चली जाती हैं, पर बिछुड़ने के दुख की बजाय अपने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं।
2: देखो बच्चों, जो हेडले सेल बनता है उसमें ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बनती हैं।
3: अंकल ये व्यापारिक हवाएं इसलिए व्यापारिक कहलाती थी ना क्योंकि इन्हीं हवाओं के झोंकों पर पाल वाले जहाज चलकर व्यापार के लिए महासागरों को पार कर पाते थे।
1: हाँ बेटी बिल्कुल ऐसा ही था।
0: तो इन्हीं हवाओं के गर्म होने और ठंडा होने से निम्न दाब और उच्च दाब बनते हैं और ये संचरण चलता रहता है, कभी धीरे और कभी बहुत तेज।
5: हाँ जैसे तूफान, चक्रवात आदि। हाँ मानव।
7: मैं देखती हूँ। अरे नमस्ते मिसेस मेलोत्रा।
5: नमस्ते आंटी।
8: नमस्ते पुत्र। नमस्ते भाई साहब।
9: नमस्ते जी। नमस्ते।
8: असल में हैप्पी ने बताया कि आज आप लोग जा रहे हैं इसीलिए मिलने चली आई।
9: अच्छा किया, अच्छा किया। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए।
7: लीजिए मिसेस मेलोत्रा चाय लीजिए।
8: थैंक यू जी। वो अपना हैप्पी आपकी सारी बातें मुझे बताता रहता है।
9: अच्छा, सारी बातें हैं।
8: जी बहुत ही रोचक जानकारियां दी आपने।
0: देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी और मानव दोनों ही बहुत होशियार बच्चे हैं।
8: ओ जी हैप्पी को आपसे कुछ सवाल पूछने थे जी।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, पूछो बेटा बोलो।
10: ओ अंकल इस धरती विच कितने महासागर हैं?
5: मैं बताता हूँ, 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। और जानते हो ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं।
2: शाबाश मानव, भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी जानकारी है।
10: अंकल, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है?
5: प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। पता है, प्रशांत महासागर के मेरिनास ट्रेंच में तो गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इसमें भूमि पर मौजूद एवरेस्ट पर्वत पूरा समा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। और सबसे छोटा और उथला महासागर है आर्कटिक महासागर।
10: आर्कटिक महासागर, थैंक यू मानव।
5: ठीक है, कोई बात नहीं।
4: एक मिनट हैप्पी, ये क्या कर रहा है? अच्छा, तो तुम अपना होमवर्क हमसे करवाने आए हो?
10: हाँ विवेक भैया।
4: लो भाई, मुझे लगा तुम्हें वाकई महासागरों में रुचि है।
0: भाई अब तो कुछ सवाल हमें भी तुमसे पूछने होंगे।
5: पर अंकल, हम आपके सवालों का जवाब कहाँ दे पाएंगे?
0: अरे दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। अच्छा ये बताओ, महासागरों के हम पर उपकार क्या है?
5: महासागर हमें खाना देते हैं और खनिज भी देते हैं,
10: और हमें तेल और गैस भी तो देते हैं।
5: और क्या देते हैं? बस इतना ही देते हैं।
2: अच्छा, और ये जलवायु, बारिश, मौसम, ये सब नहीं मिलते तुम्हें महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों से?
0: अच्छा ये बताओ, महासागर और वायुमंडल जो मिलकर एक इकाई के रूप में आपसी समन्वय से काम करते हैं, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है?
5: अंकल, यही कि अपने सारे काम पूरी निष्ठा लगन से कीजिए और अपने काम दूसरों पर मत डालिए। और मानव, मिलने बिछुड़ने के दुखों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। समझे?
9: भाई साहब, आपकी ट्रेन का समय होने वाला है, अब चलें।
0: अच्छा भाई विवेक, सृष्टि, हैप्पी और मानव, हम चलते हैं।
5: लो अंकल, मानव फिर दुखी हो गया।
0: अरे मानव बेटा, इतनी बातें समझाई और तुम फिर भी दुखी? देखो बेटे, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं तो चाहूंगा कि तुम प्रकृति के इन रहस्यों को और समझो और दुनिया के सामने लाओ। तुम हवा पानी की तरह हमारे और सबके दोस्त बनो, जो मिले तो खुशी के लिए और बिछड़े तो भी खुशी के लिए।
5: भाई जैसे पानी हवा से बिछड़ता है, बारिश बनकर हमारी खुशी के लिए। समझे मानव बेटा?
11: हाँ समझ गया। अब मैं दुखी तो होऊंगा, पर इस खुशी के लिए कि हम फिर से मिलेंगे। अंकल, आपसे मैं हमेशा डरता रहता था, पर वो डर गलत था, मुझे आपकी हमेशा याद आएगी।
0: बेटे मानव, इस याद को ही हमारी दोस्ती समझना। और हाँ, हमारी दोस्ती कैसी हो?
5: हवा और पानी जैसी।
0: शाबाश बेटा, शाबाश।

हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहाँ जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं, तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें, तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साय में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर नरी

0: बेगम।
1: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणवीर, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए।

मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें? ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है।

समय दर समय हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
1: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
0: अरे वाह। नंबर दो,
2: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
0: शाबाश। नंबर तीन,
1: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
0: बढ़िया। रोल नंबर चार,
3: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
0: अरे वाह। तुम
1: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
0: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
4: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत
अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से

खचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: चौदह स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटना

की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें, आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें, सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें, धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें, दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: आपने को गीत सुना मेरा?
6: सुना है जी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराए नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: कभी जनधन हानि न हो। लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें, आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें, सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें, धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें, दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन

0: लेने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम
2: गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
3: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
4: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
3: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
4: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
3: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
4: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से लड़ने के लिए तैयार है।
3: क्या कहा तुमने?
4: Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
3: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
4: मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जमा हो पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से गुड बाय।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी, सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं अनुजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।